0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ایجنٹ کے ہو تو آواز بھی سنک کی ہے. GFM 88 نیٹ ورک. GFM 88 سنک کی آواز.

0: स्पेशल ध्यान थियो
1: पीटीआई बानी है जे जेल खां अस्पताल मंतकीले बाबत सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते जीअं जो तीअं अमल करण जो ऐलान कंदड़ हुकूमत यू टर्न फैसले खिलाफ़ अपील दाख़िल करण जो ऐलान कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारा चयो आहे त पीटीआई बानीअ जे अस्पताल मुंतकिले बाबति अदालती हुकम जो जाइज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। जेल में केतिरा ई क़ैदी आहिनि जिन सां सिहत जा मसला आहिनि? छा सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम सभिनी क़ैदियुनि लाइ हूंदो? कानून मूजिब मेडिकल बोर्ड फैसलो कंदो त कैदीअ जो इलाज जेल अंदर या ॿाहिरि करणो आहे। इन खां अॻु वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो त पीटीआई बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जे हुकम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फैसले जे उबतड़ को बि इख़्तियार न आहे। राणा सनार सुप्रीम कोर्ट मेरिट ते फैसलो ॾिनो आहे।
0: पीटीआई वारनि जे पंहिंजे क़ाइद खे एनआरओ हासिल करण जी ख़्वाहिशमंद बुलंदियुनि खे छुई रही आहे। सदन जशन हुन ॻाल्हि जी अकासी करे थो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पीटीआई जे नाल क़ाइद खे जेल मां कढियो वञे। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ जो एक्स ते प्रोग्राम पैगाम संदसि चवणो आहे त पीटीआई जे बानी खे मुल्ज़ अदलिया खां गैर मामूली रिलीफ मिलियो आहे। बानी पीटीआई माज़ी में ॿियनि सियासतदाननि जे जेल में ज़िंदगी वधीक सख़्त करण जा मुतालबा कंदो रहंदो आहे।
1: सिंध खे केर बि विराए नथो सघे। मुल्क जे अदीबनि दानिश्वरनि लेखकनि ऐं कानूनदाननि नवनि सूबनि जे रींकट खे सियासी नारो करार ॾेई रद्द करे छॾियो। कराचीअ में दानिश्वर फोरम पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मुल्क गिर कॉन्फ्रेंस नवनि सूबनि जी मुखालफ़त जॾहिं
2: त

0: वसीला फबाइण लाइ नवनि सूबनि जो रीगट शुरू कयो वियो आहे। केसर बंगालीअ चयो त इस्लामाबाद वारा ॿुधी वठनि, सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न हूंदो, विरांगे जी ॻाल्हि कंदड़नि जो घेराव कंदासीं। ताहिर हुसैन, नईम ज़ाहिद ऐं शाज़िया निज़ामाणी ऐं ॿियनि जो चवणो आहे त कर्ज़ ऐं खसारे में हलंदड़ मुल्क अंदरि 65 सूबनि जी ॻाल्हि कई पई वञे। हू समझनि था त कराचीअ खां खेबर पख्तून ताईं सिंध आहे। सिस्टम ख़राब थियण जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जे करे ई सिस्टम ख़राब थियो। मुआशी तबाहीअ में सूबनि जो को बि हथ न आहे।
1: सिंध जो आम पहिरियां बि सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ हो, हाणे हिन वक़्तु मुल्क में न नवनि सूबनि जो माहौल आहे, न ई वरी तयारी। ॼाणे वाणे केर सिंधीदार नथा हलाए सघो। जेको आहे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जे इस्लामाबाद मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। मौलाना फज़ल रहमान चयो त सूबनि जी हिमायत या मुखालिफ़त में क़ाबिल बहस करे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न। कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सान थियो।
0: सीनियर वज़ीर पिण चयो आहे त आइन में नवाइण जो तरीक़ेकार मौजूदु आहे ऐं कंहिं बि शख़्स या इदारो आइन तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। इदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत में अहिड़ी ॻाल्हि न थी। खालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ख़तम थी चुका आहिनि ऐं ॼाणी वाणी इश्तिहाल अंगेज़ ॻाल्हियूं पिया कनि। पीटीआई बाणी जे सिहत लाइ दुआगू आहियां। बीमारीअ ते इंसानियत जो दामन न छॾणु घुर्जे।
1: इमारती परडे वज़ारत जो चवण आहे त ही फ़ैसिलो इलाइक़े में वधण छिकताण सबबि कयो वियो। छिकताण इलाइक़ाई अमुन ऐं सलामती खे नुक़सान पहुचाए रही आहे।
0: ईरान यूएई जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकई चयो आहे त इहे इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि त यूएई ते ईरान ईरान ॿ बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर कया आहिनि।
2: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं।

0: नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आहे त इन जो आसान जवाब इहो आहे हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। असां हिन हफ़्ते बि तव्हांजो उहो कमर्शियल खे नोट कराईंदासीं, तव्हां ज़रूर इंतज़ार कजो। कमर्शियल ब्रेक खां तव्हांखे सवाल नोट कराईंदासीं, हिन वक़्तु हलंदासीं नंढे कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो।

0: It's 9:30 a.m.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: तो एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉप

0: हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क
1: हिन हफ़्ते जो असांजो जेको सवाल आहे अव्हां खे ज़रूरु नोट कराईंदासीं ऐं उमीद त अव्हां तयारु हूंदव। त असांजो जेको सवाल आहे अॼु जो सवाल आहे त इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ते कहिड़े महीने में मल्हायो वेंदो आहे। जी हा, असांजो अॼु जो सवाल आहे त इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ऐं कहिड़े महीने में मल्हायो वेंदो आहे ऐं तव्हां असांखे इन सवाल जो सही जवाब ॾींदो असांखे इनबॉक्स में ॾेई सघो था। जेके दोस्त प्रोग्राम पंहिंजो पहिरियों दफ़ो ॿुधनि था या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे हाणे ऑन कयो आहे त असां हुन खे इनबॉक्स में मैसेज करण जो तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, उन बाद पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं तव्हां सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड करे सघो था। जेकी दोस्त असांजो PFM 88 जी ID ते फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं असांजे तव्हां मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाब मोबाइल 10 बजे स्टूडियो में आन थींदी 3221322888। जी हा, 0332123228। असांजो अॼु जो सवाल आहे इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ते कहिड़े महीने में मल्हायो वेंदो आहे। समझा ख़ुशी, ॾुख, उल्फत, प्यार, नफ़रत, इहे सभु मौसमनि जा नाला आहिनि। इहे मुख़्तलिफ़ मौसमूं असां ज़िक्र कयल मौसमनि जो को ख़ासि वक़्तु कोन्हे, कंहिं वक़्त बि बिना कंहिं इतलाह जे अची कड़कंदियूं आहिनि। इन्हनि मौसमनि जे बदिलजण में कॾहिं कॾहिं साल लॻी वेंदा आहिनि त वरी कॾहिं कॾहिं ॾींहं कलाक में बि मटिजी वेंदियूं आहिनि। ख़ुशी, ॾुख ऐं प्यार हर दिलि जो महबूब मशगिलो आहे ऐं इहे मौसमूं हक़ीक़त में अंदर जा आलाप ऐं अहसास आहिनि जंहिं इंसान जी दिलि में उल्फत जो ख़ज़ानो समायल आहे। उन खे हर हंधि इज़त मिले थी ऐं ॿियनि जे दिलनि में पंहिंजे लाइ वसीउ जाइ पैदा करे थो।

कोरनिया खे ऑक्सीजन ऐं गिज़ाई जुज़्ब फरा रो अमल दबाव वारे हार्मोन जहिड़ो कारेस्ट्रोल जे नाली नेकालीअ में मदद कंदो आहे, जंहिं जे करे रोअण सां राहत ऐं सुकून जो अहसास फराहम थिए थो ऐं मुतहरक कंदो आहे ऐं जेको मूड खे बहितर करे डुख या का बि तकलीफ़ खे घटाइण जो मतिलब त ॻोढ़ा तक ऐं डुख घटाइण जज़्बाती तौर वहंदड़ खां मट हूंदा आहिनि, यानी अलॻि हूंदा आहिनि, छो त उन्हनि में दबाव वारी हार्मोन्स ऐं ज़हरील मवाद जो मिक़दार हूंदो आहे ऐं रोइण सां उन्हनि मादनि खे ख़तम करण में मदद मिलंदी आहे। ॻोढ़ा वहण सां असाबी निज़ाम फाल थींदो आहे, जंहिं सां जिस्म खे आराम मिलंदो आहे ऐं जिस्म वॾी मदद मिले थी। ॻोढ़ा अखियुनि खे साफ़ सुथरो रखण ऐं उन्हनि जी चमक मदद कंदा आहिनि, जेको अमल वरी डिघी ऐं तेज़ नज़र जी लाइ मंदा आहिनि। ॻोढ़नि में मौजूद अखियुनि खे कुदरती तौर ते महफ़ूज़ रखंदा आहिनि, जंहिं सां इन्फेक्शन जा ख़तरा बि घटिबा आहिनि। ज़हरीली बैक्टेरियाज या जीत वग़ैरह जे नुक़सान खां हिफ़ाज़त थींदी आहे ऐं ॿुधण खां पोइ तव्हां थोरो अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं कंहिं बि सबब जे करे इंसान जे रोइण वारो अमल कुदरती तौर ते न थिए हा त अखियुनि जे सिहत लाइ केॾा न कशाला करणा पइजी वञा। त साईं जा अखियुनि मां ॻोढ़ा वहण बि तमामु वॾा फ़ाइदेमंद आहिनि, के ख़ुशी मां ॻोढ़ा वहंदा आहिनि, के डुख मां वहंदा आहिनि, के जीत या अखियुनि में का शइ पइजी वेंदी आहे पोइ बि ॻोढ़ा वही वेंदा आहिनि, पर हमेशा ॻोढ़ो अंदर जी ॻाल्हि हूंदो आहे, कॾहिं बि ईअं खाली रोइण सां ॻोढ़ा न वहंदा आहिनि। जेकॾहिं माण्हू अंदर सां रोईंदो त बि ॻोढ़ा वहंदा आहिनि, जेकॾहिं दिलि सां रोईंदो त बि ॻोढ़ा वहंदा आहिनि।

समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह सवाल आए असो अज जो सवाल है त इंसानियत जो आलमी डी कदें मल्हाए वेंदा जी हाँ समय इंसानियत जो आलमी डी कदें मल्हाए तुम असा इनबॉक्स में भी सवाल जो सही जवाब मोकले फेसबुक जरिए भी तुम असा सवाल जो जवाब मोकले असो मोबाइल नंबर है 0333-2-1322-88 भी तुम पांच सवाल जो सही जवाब मोकले समय इन वक्त असि स्टूडियो के घड़ियाल में पांजो 10 पिया थन असा वरी इन वक्त हलंदासी न्यूज ब्रेक की तरफ कमर्शियल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदासी कदें भी न वंजो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM Network 18 News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
8: सा गर्भातिन जे हफ्ते में एक भेरो मुलाकात है पुटन सा बेरा टेलीफोनिक गाल बोल कराण जो हुकुम सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत बुधणी जो लिखत में हुकुम जारी करे छड़ियो अदालत चयो है ते कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी बर्ताव ए जरूरी तबी सहूलतन जो हक हासिल आए पीटीआई बानी जी सेहत बानी जे इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवधो हुकुम जी भंजकड़ी ते डिनल सहूलतू फौरी थी सकजन थी।

पीटीआई बानी जे जेल खां अस्पताल मुंतकली बाबत सुप्रीम कोर्ट जे फैसले जो ऐलान कंदड़ हुकूमत जो यूटर्न फैसले खिलाफ अपील दाखिल करण जो ऐलान कानून वारे आज़म पीटीआई बानी जे अस्पताल जे हुकुम जो नए सिर जायज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो कयो। जेलनि में केतिरा ई कैदी आहिनि जिन सां सिहत जा मसला आहिनि, छा सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम सभिनी कैदियुनि लाइ हूंदो? कानून मूजिब मेडिकल बोर्ड फैसलो कंदो आहे त कैदी जो इलाज जेल अंदरि या ॿाहिरि करणो आहे। उन खां अॻु वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फैसले जे उकतड़ को नावला बि कोर्ट मेरिट ते फैसलो ॾिनो आहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते एफएम 91.6।
3: जो चवण हूँ तो असां जा कतरा छो प्यारियूं जो असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो रहमान लालायल आहे, ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जे असांजो पाकी जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदे ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में वापसि अवां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां जंहिंमें सखर लाड़काणा मीरपुर ख़ास मोरो मेरापुर सकरंड मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां सां प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं नेमत लाइ जुड़े जो अजी असमिन असांजे प्रोग्राम अॼोके में अॼु जो सवाल आहे त इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। जी हा, इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे, अव्हां खे तारीख़ ऐं महीनो ॿुधाइणो आहे। अव्हां ॿुधाए सघो था असांजे इनबॉक्स में, इनबॉक्स में मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, शहर सिटी जो नालो में सघो था। ऐं जेके दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, तव्हां फेसबुक जी आई डी आहे जी एफ एम 88, उन पेज ते तव्हां असांजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन आहे, तव्हां हुन ते बि पंहिंजो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। नवां दोस्त मिलिया कींझर किनारे, नवां दोस्त मिलिया कींझर किनारे, सवें सूर सलिया कींझर किनारे, असांजा हा गूढ़ा लहरनि में शामिल, कमल हा जे खिलिया कींझर किनारे, हो दिल जो आख़िर बि ॾोह कहिड़ो, हुयो दिल जो आख़िर बि ॾोह कहिड़ो, सचा ख़्वाब जलिया कींझर किनारे, संदे यादि आई केॾो रुनस मां जॾहिं

के ब मिलिया कींजर किनारे न जाना कदें तू आकाश ईंदे न जाना कदें तू आकाश ईंदे गजल गीत हुलिया कींजर किनारे नवा दोस्त मिलिया कींजर किनारे सवें सूर सलिया कींजर किनारे।

सयूं जा चवंदा आहिनि त पाणी हेठां ईंदी ईंदो आहे ऐं पाण खां ताक़त वारे जे मथां कावड़ चढ़ंदी नाहे ऐं पंहिंजो जेको हेठां वारो माण्हू हूंदो आहे ग़रीब मिस्किन हूंदो आहे उन तां कावड़ लहंदी नाहे। पर अक्सर ॾिठो वियो आहे त मर्द जेके हिन पंहिंजी कावड़ जेका आहे उहा औरतुनि ते कढंदा आहिनि। पोए सबब जेकॾहिं ॿाहिरां जी कंहिं सां बि अणद बणद थींदी तॾहिं बि घर जी कावड़ औरतुनि तां कढंदा, चाहे उहा धीउ हुजे, ज़ाल हुजे, अमड़ हुजे या भेण हुजे। मर्द जे हर हकी तोड़े नाहकी कावड़ जो शिकार बि औरत थिए पई। ऐं मामूल खां मामूली ॻाल्हि कावड़ में अची कंहिं वॾे नुक़सान ते बि माण्हू पहुची सघे थो।

गलत इहा ॻाल्हि हुजे त बि का पंहिंजो मुआशिरो बहरहाल असांजे मुआशिरे में औरतुनि सां ॾाढो बदसलूकी तशद्दुद ऐं मौत जहिड़नि वाक्यनि जो बुनियादी कारण कावड़ आहे। रवैयनि जो बुनियादु समाजी अण बराबरी थी आहे ऐं समाजी अण बराबरी जो बुनियादु जाहिलाणा रवैयनि सोच ऐं रस्मनि ते आहे। जेकॾहिं समाज जी हिकड़ी लगातार अमल सां पंहिंजो ठहिया आहिनि त ग़ुलाम रवैया सोच ग़ुलामी जी तवक कंदा। इहो तसलसल हज़ारे सालनि जो आहे। ख़तम करण लाइ हिकु त समाजी निज़ाम जो औरत मर्द जे फ़र्क़ खां सवाइ पिण मज़हबी अक़ीदनि खां मथां बराबरी जी बुनियाद ते कानून ऐं इंसाफ़ ते बीठल हुअणु ज़रूरी आहे। ॿियो सॼो समाज जो तालीम याफ़्ता हुअणु घुर्जे त असां जेके हिन कावड़ वारी जेका जिहालत आहे ऐं ख़ासि करे असां इहा कावड़ औरतुनि ते कढूं पिया, इहा सरासर ग़लति आहे।

0: It's 10:30.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6. It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो

जी हा समय अवां जे इंतज़ार जो घड़ियूं ख़तम जेको अवां असांखे टाइम ॾिनो ॿिनि कलाकनि जो ऐं तव्हां असांजो वेही प्रोग्राम ॿुधो अवां जा लख कुर्ब त समय ने असांजे अॼु जे सवाल जो सही जवाब हो इंसानत जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे त इहो आहे 19 अगस्त ऐं असांखे दोस्तनि जिन बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे उहे दोस्त हुन जा नाला खणंदा हलूं उस्ताद गुलाम नबी सुमरो ऐं उज़ेर सुमरो मीराणी चांडन खां ऐं फतेह अहमद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो गोट सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां हाफ़िज़ नईम लाइ हाफ़िज़ अमीन सुमराणी ईंदड़ पनवाकिल खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां सोराब मंगरियो गोठ सचे ॾिणो मंगरियो लॻ बकापुर खां हाफ़िज़ मुनीर अहमद खोसो लाड़काणे खां ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ऐं महरम अली तामरी ॻोठ सिजावल जूणे जो लॻ हुन जो ॻोठु आहे लियाकत खखराणी हुन सां गॾु आहे अंबर बुरड़ो दिलबर बुरड़ो लाड़काणे खां नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां भाउ जे बि सवाल जो जवाब सही हो मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां क़ुर्बान ख़ासकेली झंडे मरी खां चनेसर बेहण आज़ाद बेहण शहर मोरे खां फौजी पठाण खोसो ऐं मोहम्मद कासिम पहवर फुलजी स्टेशन खां इमाम बख्श सोलंगी मटियारी खां अब्दुल गनी जूणे जो सुल्तानपुर खां फहद लाशारी आशिक ख़ासकेली मोहम्मद अली जमाली हिज़बुल्लाह जमाली नवाबशाह खां बरकत अली जमाली अली हसन जमाली ॻोठ हाजी गुलाम नबी जमाली बलोचिस्तान खां मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हाले पुटरा स्टाप मीरपुर ख़ासि खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी ॻोठ मोलिन माशी लॻे वॾनि मरण खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार अली ऐं ज़हीर अब्बास सोलंगी वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठ हसूजतुनि खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई मोहम्मद कासिम चांडियो ॻोठ खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर हसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणी जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणी जो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली महेसर फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली कोरकाणनि खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी तस्मीन अवां दोस्तनि जे नाम कयूं पिया ख़ूबसूरत नगमो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कारे इल्ज़ाम हेठ बिटो कतल जवाबदार मुड़ुस ज़ाल ऐं नौजवान खे गोलियूं हणी फरार थी विया। ॻोठ मलूक शेख में जवाबदार खावन बख्श शेख कान खे क़तल करे छॾियो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वियो। पुलिस पहुची लाश ज़रूरी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: शाह लतीफ का सूफी
1: ये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जी ए एफ एम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: is brought to you by
1: White Ash Beauty Cream.
2: Asatra pyariya ayan sar cho pyariya mujo nalo mufti muhammad ahmed aaye endo aasan jawab yo aa hi bar bhi asamat allah taala ji ek badi niamat aayan baran ji sehat jo khayal rakhan lazmi hai zaruri aaye असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आहे ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत जे वधाइण में मदद करे थी ॿार उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे
3: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
4: GFM 91.6

0: यू तो है मशहूर मासूम शाह का मीनार,
1: सखर की खजूर,
0: सिंध का बढ़ाती है मान,
1: सखर बैराज की शान,
0: और अब आवाज की सूरत बनी है
1: सखर की एक नई पहचान।
0: जीए सखर FM 88,
1: सखर की आवाज।
0: जीए FM 88,
1: सिंध की आवाज।

0: तक घर सिंध का राज दुलारा शहर,
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
0: सक्खर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सक्खर FM 88, सक्खर की आवाज,
1: जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought.
2: अगर चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस, शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

कर सकते हैं कैसे. सबसे पहला तरीकाकार है सिंपली मैसेज करने का. तो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा जी FM88 के नाम से फेसबुक के ऊपर, ठीक है. तो फेसबुक के ऊपर ये पेज आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मिलने वाली पहली वाली पोस्ट आपको मिलेगी जिंदगी गुजार है की. उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए. हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे और वो की बहुत सारी लाइव कॉल जो कि आना मुझे स्टार्ट हो चुकी है. हमारा सेगमेंट सर लगाओ गाना सुनाओ जिसमें आप लोग कॉल कई कदर गाना

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीए नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ओके, किसको डेडिकेशन है?
1: जानू मैम, मेरा थोड़ा गला खराब था ना, तो इसी वजह से थोड़ा इधर उधर फिर हो गया।
0: इधर उधर मुझे मुझे तो नहीं लगा कि इधर उधर।
1: हाँ ना, गला खराब था ना, वरना मैं बहुत सुरीली हूँ जानू मैम।
0: नहीं, अभी भी आपने कम मतलब बुरे सुर नहीं लगाए, काफी अच्छे सुर लगाए। थैंक यू सो मच, आपका गाना प्ले कर चुकी हूँ, उसमें एंजॉय करें अपना बहुत सारा।

0: सुना दे।
1: एक बार मिलो हमसे तो बार मिलेंगे हम जैसे कहा तुमको तलब कार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे।
0: ओके वेरी नाइस। किसी को डेडिकेट कर रहे हैं?
2: मेरी प्यारी बहना आज जी रुख साथ।
0: ओके जी थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।

अभी जिन लोगों ने मैसेजेस और कमेंट्स कर दिए हैं उन लोगों के हम मैसेजेस और कमेंट्स को भी जरूर इंक्लूड करेंगे, तो मैसेजेस और कमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो जिन लोगों ने हमें कर दिए हैं वो थोड़ा सा सब्र कर लें, हौसला कर लें, ठीक है। और हमें जिस गाने की रिक्वेस्ट आई है वो हम प्ले करेंगे साथ साथ, और इसी के न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, और फिर हम दोनों को दोनों के बाद वापस आएंगे। क्या हो गया मुझे, दोनों के बाद वापस आएंगे, और फिर जब हम दोनों के बाद वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बोलो तो माने। बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे होंगे, तो गाना गाने के साथ न्यूज प्लस फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: आपको देंगे।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 12 PM. This project is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Jildi Allergy
4: Fakiri Soap.
5: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
0: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular. Mitiye jo maan.

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद हनीफ मैरापुर शहर से।
0: मोहम्मद हनीफ भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: शुक्रिया लगा, आप सुनाओ, ठीक ठाक होते हुए ठीक है?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
1: नहीं, हमारे को नहीं आता।
0: नहीं आता, चलें फिर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और वही लोग कॉल करें, मैं फिर से बोलूंगी, वही लोग कॉल करें जो टंग ट्विस्टर बोलेंगे, और जो टंग ट्विस्टर बोलने के लिए कॉल कर रहे हो, एक और कॉलर ट्राई करेंगे। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओके, मुझे बताया कि टंग ट्विस्टर सुनाए भाई,
1: यदि
0: टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
1: अच्छा,
0: चलें फिर सुनाए, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि एक अच्छा सा गाना हो जाए, सो हम गाना प्ले करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली अली जफर की आवाज में, और इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।
2: Where's the money?

0: It's 12:30 PM. This sound check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज अपनाए आज ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आज ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे. त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी. पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा.

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अच्छा साहब, सब कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं। काफी टाइम से हमने कमेंट्स और मैसेजेस को रीड नहीं किया है, सो कमेंट और मैसेजेस आप लोगों के जो कि मुझे रिसीव होते ही जा रहे हैं बहुत सारे, सो सबसे पहले हम चलते हैं जी मैसेजेस की तरफ। तो मैसेजेस हमें कर दिए हैं बहुत सारे लोगों ने और हमेशा की तरह हमें मैसेज किया है सबदे बोलो।

0: FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर

0: खिते को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Okay, जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार. आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और राज में वापस आ चुके हैं जी. टाइम भी बहुत लिमिटेड है. लास्ट लकी कॉलर की तरफ भी चलेंगे एंड लास्ट एंड लकी कॉलर कौन होंगे 03000113488 के ऊपर. और आज का जो सेगमेंट रहा है बोलो तो माने, जिसमें टंग ट्विस्टर बहुत अच्छा अच्छा बोला है. एक तो किसने बोला है, सफदर बलूच ने बोला है और सागर भाई ने बोला है. तो सफदर बलूच और सागर भाई आप दोनों हैं आज के सेगमेंट के विनर. ठीक है,

0: तो इसी के साथ लास्ट लकी कॉलर भी इंटरटेन करते हैं और चेक करेंगे कि जी लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे 03000113488 के ऊपर. लास्ट एंड लकी कॉलर. हेलो हेलो. ओके जी, आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं.
1: कैसी है मिस्टर रुखसार.
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. आप बताएं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं.
1: सलमान बात कर रहा हूँ. मैं सलमान बात कर रहा हूँ खैरपुर से.
0: सलमान खैरपुर से बात कर रहे हैं. सलमान पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: जी जी जी, पहली दफा ही मैं कॉल कर रहा हूँ. आप कैसी हैं. प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं. बहुत अच्छे शो है आपका.
0: थैंक यू सो मच. और सलमान मुझे ये बताइए, प्रोग्राम सुनते हैं वैसे आप.
1: जी
0: प्रोग्राम सुनते हैं हमारा.
1: जी जी जी, प्रोग्राम रोज में सुनता हूँ लेकिन खामोश लिस्टर हूँ मैं.
0: खामोश लिस्टर हैं. खामोशी आज छोड़ने का ख्याल कैसे आया वैसे.
1: हाँ वैसे आपको कोई गाना सुना तो मैं अपनी आवाज में.
0: आप गाना सुनाना चाहते हैं.
1: जी जी, थोड़ा ही गाना है बस.
0: सुना दें.
1: काली काली जुल्फों के फंदे न डा.
0: अरे ये क्या हो गया. कॉल ड्रॉप हो गई है सलमान की. और जैसे उन्होंने गाली जुल्फों के फंदों की बात की है, एक फंदा कॉल पे भी आ गया. वेरी बैड. हमने तो इनसे आज की अच्छी बात भी नहीं पूछी.

0: की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
3: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular Mittiye jo
7: करण जो ऐलान गडियल अरब इमारतन के परदेही वजीर चाहे अमन सलामती ए इलाकई चिकताण के नुकसान पहुंचाने सबब है। उनका अग गडियल अरब इमारतन के दफावारे वजीर ईरान तरफा ब बैलिस्टिक मिसाइल फायर कया वया। ईरान गडियल अरब इमारतन जो इल्ज़ाम रद्द कर छो। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई है तो इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ही रवैयो सुठे पाड़ेसरी के असूल के खिलाफ है। ईरान सां बैकडोर चैनल जरिए गालन जी दावा करण बाद अमेरिकी सदर पेंजे बयान तां फिरी वयो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां के भी गालियूं न पयूं थियन ऐं न ही गालियूं शेड्यूल थियल आहिनि। ईरानी पासदारन इंकलाब पारां अॻे बैकडोर चैनल ज़रिए राब्तनि जी तरदीद कई वई। अमेरिकी सदर आबन हर्मुस खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण वारो नक्शो शेयर करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हर्मुस बाबति नक्शो पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ ते शेयर कयो। तजिया निगारन ऐं ईरानी क़यादत पारां वॉशिंगटन जे मिटे मयार ते तनक़ीद।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।
9: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे त इन जो आसान जवाब इहो आहे। ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
10: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
0: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़।
2: ओ पिता जा पिताई, पिता ते वसे नूर मुझो तो,
0: सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: कैसा महसूस हो रहा
1: है? उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम

पार्टी जे अॻवाणनि अपोज़िशन लीडर सां मुलाक़ात कंदो। ईरान पारां छिकताण वधण जी सूरत में यूरोप में अमेरिकी फ़ौजी असासन ते हमला करण ते गौर। बरतानवी अख़बार हुकूमत जे ज़रियनि बाबति रिपोर्ट में लिखियो आहे त ईरान छिकताण वधण जी सूरत में ॾखण ऐं ओभर यूरोप ऐं बल्गारिया समेत यूरोप जे ॿियनि इलाइक़नि में मौजूद फ़ौजी असासन ते हमला करण लाइ गौर करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दमनि मूजिब जवाबी कार्रवाई जी नोयत ऐं शिदत बाबति हिकमत अमली इख़्तियार कई वेंदी। गडि॒यल अरब इमारतनि जो ईरान सां वापारी ख़त्म करण जो ऐलान। गडि॒यल अरब इमारतनि जे परडे॒ही वज़ीर चयो आहे त अमुन सलामती ऐं इलाक़ाई छिकताण खे नुक़सान पहुचाइण सबब कयो वियो आहे। हुन खां अॻु गडि॒यल अरब इमारतनि जे दिफ़ा वारे वज़ीर ईरान तरफ़ां 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर कया विया। ईरान गडि॒यल अरब इमारतनि जो इल्ज़ाम रद्द करे छडि॒यो। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। हीउ रवैयो सुठे पाड़ेसरी जे असूलनि जे ख़िलाफ़ आहे। ईरान सां बैकडोर चैनल ज़रिए ॻाल्हियुनि जी दावा करण खां फिरी वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां के बि ॻाल्हियूं न पयूं थियनि ऐं न ही ॻाल्हियूं शेड्यूल थियल आहिनि। ईरानी पासदारनि इनकलाब पारां अॻु ई बैकडोर चैनल ज़रिए राब्तनि जी तरदीद कई वई हुई। अमेरिकी सदर आबन हर्मुस खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण वारो नक्शो शेयर करे छडि॒यो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबन हर्मुस बाबति नक्शो पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ थी शेयर कयो। तज़िया निगारनि ऐं ईरानी क़यादत पारां वॉशिंगटन जे ॿिटे मयार ते तनक़ीद। हिकु भेरो ॿीहर फ़ौजी एक्शन खां सफ़ारतकारीअ जो वक़्तु अची चुको आहे। असां ते दबाउ विझण सां अमेरिका रियायत हासिल नथो करे सघे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका उहे रियायतूं हासिल करणु चाहे थो जेके इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती यादाश्त नामे में आहिनि। पेडेक्स ऐं पंहिंजे औक़ात खां वधीक ॻाल्हाए रहिया आहिनि। मश्करनि जी टीम करिश्मो नथी ॾेखारे सघे। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज बुगटी जी अवान सदर में मुलाक़ात। सरफराज बुगटी सदर खे बलूचिस्तान जे मौजूदा सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾिनी। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो फ़िलहाल लाइ वफ़ाक़ जी ज़रूरत आहे। परडे॒ही सरपरस्तीअ में सरगर्म दहशतगर्दनि खे बलूचिस्तान जी तरक़ीअ में रंडक विझण जी कोशिश हर क़ीमत में अदा करणी पवंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि समेत 4 ॼणा क़तल। घोटकी जे ॻोठ मलूक शेख में जवाबदार खावंद बख़्श शेख पंहिंजी ज़ाल मलूका ऐं नूर हसन शेख खे कारे इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़तल करे फ़रार थी वियो। ठठे जे इलाइक़े जमपीर में साली घरू तकवीअ खे फायरिंग बख़्श मंसरीअ में साहिब ॾिने मंसरी भेणवीअ इमदाद खे क़तल कयो आहे। बदीन जे फिरदोस कॉलोनीअ में जवाबदार यूसुफ मला पंहिंजी ज़ाल खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो।

0: सीटी डी ऐं सास इदारनि जी कराची में कार्रवाई। जश्न आज़ादी जे मौके ते फायरिंग जे वाके में मुलविस टिन दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। डीआईजी सीटी डी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 12 अगस्त ते डिफेंस फेज 2 में फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल कयो। गिरफ़्तार थियलनि में ज़फ़र अली फराज़ ऐं सजाद शामिल आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दिन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
4: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फ़ज़ाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज़।
4: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए और दे

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: वादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

गडि॒यल अरब इमारतनि जो ईरान सां वापार ख़त्म करण जो ऐलान। गडि॒यल अरब इमारतनि जे परडे॒ही वज़ीर चयो आहे त फ़ैसिलो अमुन सलामती ऐं इलाक़ाई चिकताण खे नुक़सान पहुचाइण सबबि कयो वियो आहे। हुन खां अॻु गडि॒यल अरब इमारतनि जे दफ़ा वारे वज़ीर ईरान तरफ़ां 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करण जो इल्ज़ाम मड़ियो हो। ईरान गडि॒यल अरब इमारतनि जो इल्ज़ाम रद्द कंदे छडि॒यो आहे। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। ही रवैयो सुठे पाड़ेसरी जे असूलनि जे ख़िलाफ़ आहे। ईरान सां बैकडोर चैनल ज़रिए ॻाल्हियुनि जी दावा कंदड़ ट्रंप 24 कलाकनि अंदरि पंहिंजे बयान तां फिरी वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां के बि ॻाल्हियूं न पयूं थियनि ऐं नई ॻाल्हियुनि जो शेड्यूल थियल आहे। ईरानी बाज़ार इनकलाब अॻे ई बैकडोर चैनल ज़रिए राब्तनि जी तरदीद कई हुई। अमेरिकी सदर आबना हर्मुज खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण वारो नक्शो शेयर करे छडि॒यो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबना हर्मुज बाबति नक्शो पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ ते शेयर कयो। तजिया निगारनि ऐं ईरानी क़यादत पारां वाशिंगटन जे 2 मयार ते तनक़ीद। हिकु भेरो ॿीहर फ़ौजी एक्शन खां सिफ़ारतकारीअ जो वक़्तु अची चुको आहे। असां ते दबाउ विझण सां अमेरिका रियायत हासिल नथो करे सघे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका उहे रियायतूं हासिल करण चाहे थो जेके इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती इजाज़तनामे में आहिनि। पेठेक सहित पंहिंजे मशकरनि

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: द गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: सिंध की

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

इस्लामाबाद में रावलपिंडी में तूफानी बरसात, पिंडीअ में 130 मिलीमीटर बरसात सबब तबाही, रोड रस्ता तलाब बणजी विया, पाणी घरनि ऐं दुकाननि में दाख़िल। नालाली में पाणी जी सतह में इज़ाफ़े खां पोइ भर वारनि इलाइक़नि खे खाली करायो वियो। पंजाब जे गुजरात, नारवाल, शकरगढ़ ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसात, हेठनि वारे इलाइक़नि में पाणी भरिजी वियो।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि समेत चार ॼणा क़तल। घोटकी जे ॻोठ मलूक शेख में जवाबदार खावंद बख़्श शेख पंहिंजी ज़ाल मलूम शेख क़तल करे फरार थी वियो। ठठे जे इलाइक़े जंपीर में साले घरू तकरार तां भेणवीअ खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। ॻोठ लाल बख़्श मंसरीअ में साहिब ॾिने मंसरी भेणवीअ इमदाद खे क़तल कयो। बदीन जी फिरदोस कॉलोनीअ में जवाबदार यूसुफ़ मल्ला पंहिंजी ज़ाल खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। कराची में सीटीडी ऐं एहसास इदारनि जे गरियल कार्रवाई जश्न आज़ादी जे मौके ते फायरिंग जे वाके में मुलविस टे दहशतगर्द गिरफ़्तार करण जी दावा। डीआईजी सीटीडी अज़र मेसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 12 अगस्त ते डिफेंस में हिकु ॼणे खे क़तल कयो वियो। वाके में मुलविस ज़फ़र अली फराज़ ऐं सजाद खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। कराची जे इलाइक़े सी व्यू भरिसां अपार्टमेंट जी पार्किंग में बीठल कार मां 2 ॼणनि जा लाश हथाया आहिनि। SSP ॾखण अली वाके वारे हंधि पहुतो। SSP जो चवण आहे त लाशनि जी हालत ॾाढी ख़राब आहे। हिक जी सुञाणप असदुल्ला तौर थी आहे, ॿिए जी सुञाणप न थी सघी आहे। मामले जी वधीक जांच कई पई वञे। FIM मनी लॉन्ड्रिंग जे इल्ज़ाम हेठि सांगर जे अबिद बलोच समेत टिन जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे वरितो आहे। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल आबिद बलोच, अगुणे जूनियर क्लार्क गुलाम सरवर ऐं पुलिस कांस्टेबल मुमताज़ अली ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो। केस में ॼाणायो वियो आहे त जवाबदारनि मनी लॉन्ड्रिंग ऐं स्मगलिंग मां हासिल कयल रक़म मां 100 एकड़ ज़रई ज़मीन ख़रीद कई वई। ज़मीन पुलिस कांस्टेबल मुमताज़ अली जे नाले ते रजिस्टर्ड कराई वई। ऐं घोटकी में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो احتجاج। ॻोठ वलू महर जे आबादगारनि काज़ीवा जे RD 6 वटि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ डायरेक्टर सीडा जी आफ़ीस अॻियां मुज़ाहिरो कयो। आबादगारनि चयो आहे त सरकारी माप मूजिबि RD 6 वटि 5 फुट 8 इंच पाणी बीहारे ॾिनो वञे। पाणी न हुअण सबबि मुआशी बदालीअ जो शिकार थी विया आहियूं। पाणी फराम कयो वञे।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो की है वो 91.6 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: इट्स 8:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग, शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम, अब आपकी खूबसूरती का फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। आप प्रोडक्ट

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

صرف غلام کے لیے باشم.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 9 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har achhi

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कैसा महसूस होगा
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

ॾेई सघनि था, दुकान स्कीम मां भरपूर फ़ाइदो वठनि। पारां चिताण वधण जी सूरत में यूरोप में अमेरिकी फौजी असासन ते हमला करण ते गौर। बरतानवी एरियन बाबति रिपोर्ट में लिखियो आहे त ईरान तामजुब जवाब बाबति

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KT
1: मटियारी क्यारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अभी बुधो प्यार।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेहरान की।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
1: आप
4: धमकी दे चली पी चाई पानी अस्पताल मुंतकली बारे फैसले जी आज यहाँ बीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी मुखालिफ घुर्ज अगवाड़न से मुलाकात बाद मीडिया से गालाइंदे चयो तो यो मुमकिन ना है तो असि इतिहादी बेंचेस से वेठा हुजूं असा के कारकुन जा लाश मिलान हुकूमत असा सिवाय कानून साजी करे सके थी तो करे डेखारे खदशा खत्म थियण ताई हुकूमत सा सहकार न कंदासी जोर जबरदस्ती सा न अग गाल मनी हा ऐं न हाणे मञीदासीं। नून लीग खे आज़ाद कश्मीर जी तकरारी इलेक्शन घुर्जे त उहा खेनि मुबारक हुजे। इलाज हर कैदी जो हक़ आहे। बहितर हो त सुप्रीम कोर्ट खां अॻु हुकूमत इहो क़दम खणे हा। बिलाल भुट्टो ज़रदारी नवनि सूबनि बाबति ॻाल्हाईंदे चयो त नवनि सूबनि बाबति मौक़े वाज़े आहे त जेको फ़ैसिलो आवाम जो हूंदो उहो ई फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी जो हूंदो। नवनि सूबनि बाबति सिंध असेंबली जो मौक़े बि सभिनी जे साम्हूं आहे। घणे वठो त केतिरा फेरा ठहराउ पास थिया आहिनि।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो, उधर दा।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: तुम्हें लगता है तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने? मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रख सकती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: मुझे छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: तो पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेन जो मान बताए।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई आप
3: हिंदुस्तान लीगल के पाकिस्तान का इज्जत कर रहा हूँ। अगर मैं तमाम सुबह के कारोबार को पार्लियामान के कारण एहतराम करूंगा तो अपना संघ कारोबार का खिलाफ कोई फैसला कर सकता है। मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं।
4: नवन सुबन बाबत जो हों वही पीपल्स पार्टी जो हों जैस तीन का असेंबली मुखालफत पर मैं एतराज कर सका तो सिंधी सूरत हाल ऐसी असेंबली सूबन खिलाफ ठहराव मंजूर कया हिंसर तीन कें तरमीम बाबत का शे सामू ना आई उनते किए गए तो जिते इतफाक राय मौजूद हुए उत फैसला इतफाक राय से क्या वन अस तस्लीम कदी वफाकी सरकार बानी पीटीआई के जेल में इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने वालों फैसलो चैलेंज कर छो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया है तो अदालत अबूरी मरहले में समूरी सजाओं जी जो तीय मंजूर करे केस की बुनियादी मसले के ही खत्म कर छो जो सुप्रीम कोर्ट असूलन की उबतड़ है। आर्टिकल 25 बराबरी जो हक डे तो कें एक सजा याफ्ता कैदी के खानगी अस्पताल में इलाज की सहूलत डेण से फौजदारी इंसाफ जो समूरो निजाम मुतासिर अदालत के अड़े फैसले से बेन कैदियों लाए भी अड़न मुतालबन जो दरवाजो खुली वो हुक्म जारी करण का अग लागापियल धुरियन के नोटिस भी न डनो वो अदालती फैसलो इंसाफ के असूलन की उबतड़ है तेकर उन नजरसानी कई वन।

0: कंपनियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीजल की कीमतों के अंदर एक कमी 30-32 रुपए से ज्यादा की कमी आप देखेंगे। इससे हमारे वो काश्तकार दोस्त जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो ट्यूबवेल चलाते हैं, उनकी तकलीफ को मदम करने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ उसके ऊपर मरहम रखा जाएगा। आवाम को बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ा। ओगरा रियासत का एक इदारा है जिसकी बुनियादी मकसद ये है कि वो आवाम के तहफ्फुज को यकीनी बनाए।
1: मांगई सटे लवाम लाए चंगी खबर। वफाकी हुकूमत डीजल 30-32 रुपया फी लीटर सस्तो करण जो ऐलान करे छो। पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलिक है त मुल्की रिफाइनरीज डीजल के अघन में घटताई बाबत वजी अजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त कबूल करे वरती। ओगरा पारा अज डीजल के अघन में घटताई जो नोटिफिकेशन जारी किया। डीजल सस्तो कर आवाम के रिलीफ देने की कोशिश कई पी वे। वफाकी

कानून तहत कई वी कराची में डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में इंसामी यूनिटन सूबन बाबत बहस के मसनू कूड़ ते बदल करार दई छो। सूबन ते बहस अवामी बहस ना है, उन पुठियां को भी मकसद है सूबन के नजरअंदाज करे पैंजा फैसला बढ़ की कोशिश मुल्क में डफेड़ वेखेड़ की कोशिश है। कराची में डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन जो सेमिनार जै गाल न मनी वे वहा सूरत हाल मुल्क लाए दुरुस्त ना है। बेस्टर यासिर शाह पाकिस्तान में इंसामी यूनिटन सूबन बाबत बयानियों कूड़ ते बदल है। भारत समेत जिन मुल्क में सूबन जो हवालो दिनो वे तो उन में वफाकियत जो निजाम ही ना है। मुल्क में बाबू सिस्टम हली रो है जो न हल। आमिर नवाज भड़ाए कें नो सूबो ठाणो है तो पंजाब या बेन हंधन से ठाए सिंध जो विरागो कबूल ना है। सिंध जे इम्कानी विरागे खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी पारा

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: साए दिल पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
3: कहीं भी साजिश के कामयाब थे ना दीदी।

0: हुकूमत वापारियुनि लाइ रिटेलर स्कीम एप लॉन्च करे छॾी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुमलिक चयो त अॼु खां शुरू कंदड़नि लाइ स्कीम बदिरां मामूल वारे तहत बि रही सघनि था। ईरान पारां छिकताण वधण जी सूरत में यूरोप में अमरीकी फौजी असासन ते हमला करण ते होर। बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स ईरानी हुकूमत जे ज़रियनि बाबति रिपोर्ट में लिखियो आहे त ईरान छिकताण वधण जी सूरत में ॾखण ऐं ओभर यूरोप ऐं बल्गारिया समेत यूरोप में मौजगर लॻी रहियो आहे। अमरीकी कदमनि मूजिब जवाबी कार्रवाई जी नोयत ऐं शिदत बाबति हिकमत अमली इख़्तियार कई वेंदी।
1: आप सुन रहे थे एन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।